हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
7: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा वे।

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: से दमदार और रोमांचक कहानी,
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है,
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर। 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारा।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। रेडियो हांजी 1674 AM 24

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Hanji, yoy Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: Alpha.
6: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
6: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
5: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा
6: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
5: इंडिया अल्फा से डरेगा।
8: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

मैं तो अनुदास है। पहला तो यह समझो कि आस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ सालों के अपनी मिलटराइजेशन के उत्ते अपनी डिफेंस सैक्टर के चंगा पैसा खर्चना शुरू कर दिता है और यह चाइना पसंद नहीं है क्योंकि चाइना यह है कि तुम इन्ना पैसा पुसा ना खर्चो अपनी मिलटरी कमजोर जी रखो तो असी थानू कुछ नहीं कहते। पर द मूवमेंट कोई कंट्री अपने आप न डिफेंस नू स्ट्रोंग करन लगती है अपनी मिलटराइजेशन नू होर वधान लगती है तो चाइना नू उना जे उना दे आंढ गुआंढ चो कंट्री पैंदी है तो उना नू तकलीफ हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया ते हुण आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया हालांकि नेटो दा मैंबर नहीं हैगा, नेटो एक रख्या समझौता है, ये एक अलग एपीसोड आप कर चुके, पर बावजूद इस दे नेटो ने एक मैथाडोलॉजी कढ़ी है। वो मैथाडोलॉजी की है, हुण बेसिकली नेटो कौन है? अमेरिका, कैनेडा ते यूरोप दे देश जिहड़े हथियार बनाते हैं, फ्रांस बनाता हथियार, जर्मनी बनाता, इंग्लैंड बनाता, अमेरिका ते कैनेडा बनाते हैं, तो दुनिया भर के हथियार बेचना चाहते हैं। पिछले हफ्ते भी आप गल की थी, इन्हों सब तो वध फायदा ही इस चीज़ तो है कि जे तुसी जिन्ने ज़्यादा हथियार अपने वधाओगे उन्ना ज़्यादा सानू फायदा होगा, इहदा नेटो मुल्कां नू फायदा होएगा। नेटो ने एक मैथडोलॉजी कढ़ी है कि किसी कंट्री का जिहड़ा बजट है उहदी जिहड़ी जी डी पी का घट्टो घट 3% डिफेंस बजट होना चाहिए। आस्ट्रेलिया करता रहा हो और अगे नू भी कर रहा है। इनफैक्ट अगले एक दहाके च आस्ट्रेलिया ने अपनी मिलटरी के उत्ते $425 बिलियन खर्च देने ने, मतलब इहदी कोई एड्डी खास लोड़ है भी नहीं। $130 बिलियन तो सीधे ऑकस वाले हो गए, सो 90 बिलियन कह रहे थे वो तो हुण खर्च वाधा वाधा $130 बिलियन हो गया। सो 4-5 परमाणु समर्था के नाल चलन वाली सबमरीन्स आस्ट्रेलिया ने लैनी है, उस तो इलावा टैक्नोलॉजी लैनी है। टैक्नोलॉजी ट्रांसफर का खर्चा रलू के टोटल यह $130 बिलियन बनता है। वो तो इलावा $60-65 बिलियन आस्ट्रेलिया ने मिजाइलों के उत्ते खर्चने ने, अपना डिफेंस सिस्टम मिजाइल डिफेंस सिस्टम वो खर्चने ने। फिर कुछ प्रोजेक्ट होर भी होंगे ने, जिमें जड़े आले दुआले जड़िया मिलटरी एक्सरसाइज ने या अमेरिका ने कितने अटैक किया वो खर्च करना है, ये वो सारे। सो रला रलू के होर बहुत कुछ आस्ट्रेलिया ने हर साल जड़ा है वो खर्च जड़ा वो $100s of billion के करना, तो अगले 10 साल के अंदर अंदर $425 बिलियन खर्च कर देना है। आस्ट्रेलिया नू इन्ने खर्च की लोड़ है? सवाल यह पैदा होता है, दो जवाब ने। पोलिटिकली समझोगे तो शायद नहीं, डिप्लोमैटिकली समझोगे तो शायद यस, पर पोलिटिकली इत्थे कुछ लोग डिप्लोमैटिक आंसर्स देन लग पए ने। उदाहरण पॉलिन हैंसन, वो कहते कि 3% काफ़ी नहीं है, जी डी पी का 5% खर्चा, असी होर हथियार खरीदा, असी होर मिजाइलों लवेंगे, खरीदा परचेज बाय। सो यानी कि जो तुम कोई चीज़ परचेज करते हो तो तुम्हें वो बदल च इवज च पैसे देने ने, डॉलर देने ने, यानी कि वह फायदा किनू है? सीधे तौर के उत्ते उस धिर जिन्हों पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर जी गल है कि वह अपनी बाजारी कीमत तो ज़्यादा दे उत्ते बिक्री होएगी, खास तौर दे उत्ते अमेरिका दे, जे तुसी पिछ लग है गे हो तो अमेरिका ने जे कहता कि आ जहाज ए फाइटर जैट है तो $130 करोड़ का है तो तुहानू $130 करोड़ देने ही पैणगे। ऐ थोड़े कि ठीक ठीक ला लो यार, अमेरिका तुहाडे तो पहला भी तो 8-10 जहाज आप लए ने, चलो 100 करोड़ ना थोड़ी ना साड़ी, ऐदा नहीं हुंदा, इंटरनेशनल सौदे ऐदा नहीं हुंदे हुंदे। तो दूजी चीज़ ये हैगी है कि जे वह बजट 3% के उत्ते 450-450 डॉलर है, 5% के उत्ते बजट $600 बिलियन तो भी ज़्यादा का हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे ने, जिमें लिबरल नैशनल गठजोड़ के भी कुछ लीडर ने कहा, पॉलिन हैंसन ने भी कहा कि असी जी डी पी का खर्च टोटल बढ़ा देंगे, वो खर्च उधर बढ़ा के वो बजाए तुम कित होर क्यों नहीं लगा सकते? जे आस्ट्रेलिया का हुण तक $100-150 बिलियन के बजट के भी तो आपने फाइनैंस बजट चला, चलो ठीक है मान लिया कि हुण महंगाई बढ़ गई है,
ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
6: Hi, hello, this is Ali Asgar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारे।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: योहाजी 1674
1: अल्फा सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
1: आलिया भट्ट शर्वरी अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अल्फा
2: इंडिया अल्फा से डरेगा
4: वो वेट कर रहे तुम्हारे
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो दस्तार तुहाड़े नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
6: लादे फेरे।

0: Alpha.
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: अल्फा
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।
2: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
3: फुल कहारी उन्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादर ते पा दे मोरनी। ससिका जी मैं तो अपना गिप्पी करे बात तुसी सुन रहे हो। हां जी रेडियो।
4: हां जी।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सतकाल, मैं हूं दिनी शेरगिल, से तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Hanji 1674 AM.
5: White Hill Studios pesh karte han period action thriller Dastaan.
6: Ek alla kapda nahi hai, ek kahaniyan kai sadiyan di.
5: Starring Tarseem Jassad, Geet Goraya te Yograj Singh.
7: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
8: Create terror.
9: ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਏਟੀਐਪੀਲਸ, ਸ radio101.com.au।
10: 11 जुलाई 2026 शनिवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दी खबरां लेके आए रेडियो हांजी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दे नाल शुरुआत करते हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका के ताज़ा हवाई हमलों के नाल चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल पावर नु नुकसान पहुंचे है। बीबीसी की खबर के मुताबक 8 ते 9 जुलाई की रात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स की फारस न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि IRGC के हवाले के नाल चाबहार फ्री जोन संगठन के उत्ते हमला किया गया। इस हमले के विच टावर नु नुकसान पहुंचाया गया और इस हमले के विच चाबहार फ्री जोन के एक गोदाम नु भी नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का दावा है कि बुधवार ते वीरवार के दिन हुए अमरीकी हमलों के विच 14 नागरिक भी मारे गए ने। बाद दे विच ईरान ने भी दावा किया कि उन्होंने भी जवाब दिंदया होया कुवैत बहरीन ते कतर दे विच अमरीकी टिकाणियां नु निशाना बनाया। बाद दे विच वीरवार दे दिन सरकारी हमायत वाले मीडिया के मुताबिक ईरान ने कुवैत जॉर्डन ते इराक दे विच भी कई थावां दे उत्ते हमले किए। चाबहार पोर्ट जिहड़ा है यानी बंदरगाह भारत दे लई काफी अहम मन्नी जांदी है। भारत ने साल 2017 तो ही चाबहार बंदरगाह दे विच निवेश करना शुरू किया सी। हालांकि भारत सरकार ने इस साल अपने केंद्रीय बजट दे विच कोई भी रकम इस बंदरगाह दे लई जारी नहीं की। यह पहली बार है जो भारत ने ईरान दे नाल इस साझा योजना दे लई बजट दे विच कोई भी रकम जिहड़ी ना रखी होवे, पर पिछले कई सालों तो भारत लखां करोड़ां रुपए इस पोर्ट दे उत्ते लगांदा रहा है। दस दईए कि होरमुज दे खेतर दे विच इस वक्त आवाजाई बुरी तरह दे नाल प्रभावित हुई है। अमरीका ते जिहड़ी ईरान की जंग है उसका खामियाजा इन्हां मुल्कां नूं भी भुगतना पै रहा है जिहड़े इत्थों तेल की सप्लाई हासिल करदे सी। भारत उन्हां दे विच सब तो वड्डा एक मुल्क है। उथे अगली खबर की भी जे कौमांतरी खबर की सांझ पाईए तो ईरान की पार्लीमेंट ने जिहड़े एक मैंबर ने इजमाइल कोसारी उन्होंने चेतावनी दी है कि UAE नू अमरीका का सहयोग करन दी कीमत चुकानी पएगी। उन्होंने ईरान दे विच होए हालिया हमलों के पिछे संयुक्त अरब अमीरात का हथ होने का दोष भी मड़िया। एक खबर के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इन्होंने कार्रवाइया के चलदे UAE ने खुद को ईरान के दुश्मनों के लाइन के खड़ा कर दिता है। कोसारी ने कहा कि इसका जवाब UAE नू भी दिता जाएगा। दस दईए कि UAE दे विच भी अमरीका के फौजी अड्डे ने। हालांकि अमरीकी फौजी टिकाणियों के उत्ते UAE के उत्ते हाले तक कोई हमला नहीं होया, पर UAE दे विच समुद्री रेल ते हवाई योजना के नाल नाल तेल ते गैस के जिहड़े प्लांट ने उन्हां दे उत्ते भी अमरीकी कंट्रोल एक तरीके दे नाल है। चीन तो अगली खबर जिथे चीन दे सरकारी मीडिया दे मुताबिक चीन ने अपने पुलाड़ प्रोग्राम दे विच वड्डी कामयाबी हासिल करदिया होया पहली बार दोबारा इस्तेमाल होण वाले रॉकेट दी सफल लैंडिंग कीती है। रीयूजेबल चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारपोरेशन ने दसिया है कि लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट शुक्रवार दे दिन स्थानक समय दे मुताबिक 12:15 चीन दे हैनान तो उड़ान भरदा है। रॉकेट दे उपरी हिस्से अलग होने दे करीब 6 मिनट बाद उसका बूस्टर सीधा वापस धरती दे उत्ते आ उतरदा है और उसनू समुद्र दे विच मौजूद एक तैरदे हुए प्लेटफॉर्म दे उत्ते सुरक्षित रिकवर भी कर लिया जांदा है। इस तों संकेत मिलता है कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट दे मामले च चीन हुण अमरीका नूं चुनौती दे सकदा है। इस तों पहलां एलन मस्क दी स्पेस एक्स ते एमेजन दे संस्थापक जैफ बेजोस दी मलकियत वाली ब्लू ओरिजन कंपनियां भी इस तरीके दी सफल लैंडिंग कर चुकियां ने। आम तौर ते रॉकेट नूं इक्को वार इस्तेमाल होण वाला मन्निया जांदा है। उड़ान दे दरमियान उस दे अलग अलग हिस्से खत्म हो जांदे ने, पर इस दी वजह दे चलदिआं इह रॉकेट जिहड़ा है उह पुलाड़ दी यात्रा करन दे विच इक्को ही वार वरत्या जांदा है और इस नूं काफ़ी महंगा भी मनिया जांदा है। बूस्टर नूं आम तौर दे उत्ते रॉकेट दा सब तों कीमती हिस्सा मन लिया जांदा है। इसे दे नाल सैटेलाइट लॉन्च करना, पुलाड़ दे विच दूसरे अलग अलग खोज पड़ताल दे काम करना, काफ़ी काम इहदे नाल हुंदे ने। और दसंबर 2015 च स्पेस एक्स ने पहली बार ऑर्बिटल उड़ान तों बाद दोबारा इस्तेमाल होण वाले फालकन 9 रॉकेट की सफल लैंडिंग कीती सी। फिर 2025 दे विच ब्लू ओरिजन कंपनी ने भी अपने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल लैंडिंग कीती सी। उत्थे ही बरतानिया के प्रधानमंत्री बनन दे दिशा दे विच अग्गे वध रहे लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नम ने गजा दे विच इजराइल की कार्रवाई के उत्ते देश की सत्ताधारी लेबर पार्टी की शुरुआती रुख दे लई माफी मंगी है। सोशल मीडिया से जारी एक वीडियो सुनेहे दे विच बर्नम ने कहा कि उन्होंने पार्टी इस मामले दे विच गलती कर गई। गजा जंग दे शुरुआती हफ्तियां दे दरमियान बरतानिया दे प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने कहा कि इजराइल गजा दा पानी ते बिजली कट्टन दा अधिकार रखदा है। इस बयान दी काफी आलोचना हुई सी। बाद दे विच उन्हां कहा कि इह मतलब नहीं है कि इजराइल नूं अपनी रक्षा करन दा अधिकार नहीं है। पर हुण एंडी बर्नम जिहड़े कि हैगे तां ब्रिटिश लेबर पार्टी च ने, बर्नम ने कहा कि उन्हां दी अगवाई दे विच इस मामले दे उत्ते ब्रिटेन दा रुख काफी सख्त रहेगा। उन्होंने इजराइल दे उत्ते ज्यादा दबा बनाने की गल भी की है। देश दे दक्षणपंथी कैबिनेट मंत्रियों दे द्वारा दे उत्ते पाबंदियां लगाने की भी गल की है। भारत दीआं खबरां दी सांझ पाईए ते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दे दिन उन्होंने पटीशनां दे उत्ते सुनवाई करनी

0: पुछदा ही नहीं।
1: यार तू इतनी इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674
3: जो भी हाथ इस दस्तार नू पिया ला देना है दस्तार।
4: मेरा कजन आया पंजाब तो
3: पंजाब दे विच भी समा ते हालात साडे खिलाफ ने ते इत्थे भी
5: हालात सुखाले हुए तां वापस भी जाया जा सकता।
3: कहिंदे ने जम्मण वाली ते मरण वाली थां जे इक होवे तां रूह ते कोई कर्जदारी नहीं रहिंदी। हुण तां पता नहीं कित्थे मरना है।
4: ऑफिशियल जॉब से थे वाइट स्किन लिया साडे लिए तां छोटे मोटे बिजनेस है या फिर लेबर है।
3: पर इहदे खिलाफ फिर खड़ना चाहिए ना।
4: जे पता होवे हार हो गया तां उत्थे लड़न दा कोई फायदा नहीं हुंदा।
3: ब्रदर जिहड़ियां कौमां अपनी होंद लई लड़नों हट जांदियां ने ना वो कौमां दा वजूद खत्म हो जांदा।
6: They have slavery in their blood. We have kingship in ours.
7: Create humiliation. Create terror.
8: Has the body been identified?
9: It's just Indian blood. No need to worry.
10: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।
11: ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਚੱਕੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ
3: ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਬੰਦੂਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ।
12: ਡੰਗਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ।

0: ते दस्तार ले लड़ूगा भी।
1: सो दोस्तों ये ट्रेलर सुन रहे सी तुसी दस्तार फिल्म दा। दस्तार फिल्म 17 तरीक नूं रिलीज़ होनी है। इस समय प्रमोशन पूरी जोरां शोरां दे उत्ते है, ते जिहड़े तरीके दे नाल प्रमोशन कीती जा रही है लगदा है कि फिल्म काफ़ी प्रोमिसिंग है। ट्रेलर दस रहे ने, गाने दस रहे ने, पूरी मेहनत लाई गई है टीम दे वल्लों। खुद तरसेम जसड़ जी इत्थे आस्ट्रेलिया दे विच इस टाइम प्रमोशन दे लई टूर दे उत्ते ने, ते अज रेडियो हांजी दे वेड़े आए ने, ते इन्हां दे नाल गलबात करांगे। आपां जाणांगे इस फिल्म दे बारे, इन्हां दे फिल्मी सफर दे बारे, ते होर बहुत सारा कुछ। भाई स्वागत तुहाडा।
2: थैंक यू भाई जी, थैंक यू। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल सारे स्रोतियां नूं जी,
1: सारिआं वल्लों सत श्रीकाल। आस्ट्रेलिया दे नाल बड़ा गाढ़ा नाता हुण इदां लगदा वी जिद्दां आपणा आपणा जिहा, तुसीं सानूं उपरे नहीं लगदे हुण।
2: कई वार आ गए जी हुण इत्थे, ते हुण थोड़े समय बाद गेड़ा लग जाता फिल्म के सिलसिले च, कदे टूर के सिलसिले च।
1: कभी की फर्क लगता भाई जो आप टूर कर आने गाँव आने, तो उदो एक अलग माहौल बनता वा शहर के, जो आप प्रमोशन लिए आने उदो एक अलग तुम महसूस करते हो कुछ वक्रा
2: हों जी? उदो तुम मोर लाइक थोड़ा लाइव शो वाल ध्यान हों, तुसी सारे शहरां दे विच जाना हुंदा। जदों फिल्म दा प्रमोशनल टूर हुंदा जी, दिन बहुत घट हुंदे आ तुहाडे कोल। हुण मैं सिर्फ 4 दिन लई आया, ते 4 दिनां दे विच सिडनी भी जाना ते मैलबर्न भी। अज हुण साडा लास्ट दिन आ, कल आए सीगे हजे, परसों राती आए सी, ते कल दा दिन सीगा जी, कल प्रीमियर सीगा, वर्ल्ड प्रीमियर इत्थे मैलबर्न च कीता, ते अज हुण सिडनी चले जाणा, कल नूं सिडनी प्रीमियर आ, ते परसों नूं असीं उड़ जाणा। सो इह हुंदा, इहदे विच शॉर्ट ट्रिप हुंदा, तुहानूं ओना समां नहीं मिलदा। जदों शोज लई आईदा तां महीना डेढ़ महीना हुंदा, तां तुसीं सारा आस्ट्रेलिया घूमदे वी हो, समां वी हुंदा थोड़ा ज़्यादा घूमण लई, विचारण लई, लिखण लई। इहदे विच प्रमोशन दे विच मोर लाइक तुसीं प्रमोशन च इनवॉल्व हुंदे हो, इंटरव्यू दे विच इनवॉल्व हुंदे हो, सो इहदे च भज नठ जांदे आ।
1: अच्छा, फिल्मां दी प्रमोशन करनी एक भज नठ आ, फिर जदों तुसीं शूट ते हुंदे हो उदों वी रातां जाग जा के फिल्म बनाउणी करनी, नाल शो वी चलणे, इह सारा कुछ बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं हो जाता?
2: हो जाता बई, पर उन्हों इंजॉय करीदा। मैं जे सच्ची पुछो, मैं प्रमोशन वाला पार्ट थोड़ा घट इंजॉय करदा, मेकिंग वाला पार्ट बहुत इंजॉय करदा। उदों चाहे थोनों 12 घंटे 18 घंटे जिन्ने मर्जी भी करना पैंदा, शूट करना पैंदा, उन्हों इंजॉय करदे, क्योंकि वह एक क्रिएटिव वर्क है बई, है ना। जिहड़ा बंदा तुसी क्रिएटिव, थोड़ी यह जॉब आ, तुसी इहदे विच क्रिएटिविटी करदे हो, है ना, थोड़े लई इह इंटरस्टिंग आ, है ना, क्योंकि तुसी उहदे विच हर रोज़ नवा, किन्ने दर्शक सुन लई हुंदे आ, बेताब हुंदे आ वी तुसी बोलोगे, गल्लां दसोगे, कुछ नवा लैके आओगे, गल करोगे, थोड़ी यह क्रिएटिविटी आ। हुण साडे लई जदों असी क्रिएटिविटी करनी आ, असी करनी आ कैमरे दे अगे जदों फिल्म बनाउणी आ, जिहड़ी ओह क्रिएटिविटी आ, ओह हैगी आ पूरा, मतलब फन पार्ट जिहदे विच कहिंदे आ वी, ओह चाहे थकावट भी आ, ओह च भी आनंद आउंदा। जिहड़ा प्रमोशन वाला पार्ट हो जांदा, इह तों मैं ढिल्ला रहा पिछले बहुत समय तों, ते मैं नहीं हुंदा, मैनूं इह हुंदा वी ना करिया जावे ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ गल इन्नी कि हुंदी आ, गल होर कोई नहीं हैगा। यह जर्नी का एक हिस्सा हुण बन चुके आ, बहुत ज़्यादा हरेक बंदा बिजी आ, सोशल मीडिया का समा आ गया, पर आपदी चीज़ नूं आप ही बड़ा चंगा कही जाना, आपदी चीज़ बारे आप बहुत बोली जाना, वह थोड़ा जिहा उत्थे थोड़ा जाक जाईदा, है ना भी। अगला कहिंदा हरेक अपनी तां कहिंदा ही हुंदा, कहिणा बणदा भी आ, पर वह औखा लगता बार बार, हर बार हर बार कहना, है ना, हरेक चीज़
1: इस वारी कुछ वखरा आ फिर कहना,
2: तो जदों के वखरा करीदा भी आ, है ना, तो फिर मैनूं लगता हुंदा भी मोर लाइक हौली हौली चलो ऑडियंस का एक ना ट्रस्ट बनना चाहिए सिनेमे दे विच फिल्मां दे विच, है ना, भी किने बनाई आ, किहड़े बंदे दा की कैटालॉग आ। जे आपां ओह सिनेमे दे ट्रस्ट दे बेसिस ते जावांगे, एक क्वालिटी ट्रेलर दे बेसिस ते जावांगे, ओह ज़्यादा वधिया, क्योंकि प्रमोशन तां कई वार जिहड़ी फिल्म नहीं भी वधिया उहदी भी बहुत ज़्यादा होई हुंदी,
1: बिल्कुल उहदी ज़्यादा हो जांदी
2: आ, उहदी कई वार ज़्यादा हो जांदी आ। सो ओह प्रमोशन कई वार वर्क भी कर जांदी आ, उहदे नंबरस भी आ जांदे आ, फिर कई वार माड़ी एग्जाम्पल भी सैट हो जांदी आ, फिर कई वार चंगी फिल्म बणाउण वाले बंदे दा दिल भी टुट जांदा वी यार, जदों कम्म ही कल्ला प्रमोशन ते एडवर्टीजमेंट दा रह गया तां फिर की होगा, है ना, फिर उहदे नाल क्वालिटी गिरदी आ, फिर हौली हौली ऑडियंस दा ट्रस्ट, कहिंदे हुंदे आ इक माड़ी फिल्म जदों सुपरहिट हो जाए ना, वह कई चंगियां नूं फलॉप कर जांदी आ, ते जे एक चंगी हिट हो जाए तो वह कई चंगियां नवियां दे बीज ला जांदी आ।
1: सही गल है, सही गल है, एक फिर लोगों नूं सिनेमा तक वो खिंच के लै जांदी आ। अच्छा, इस वारी मैं अगे दर्शन दिदारे हुंदे रहिंदे आ, टूर बारी भी होर कई चीज़ा बारी मैं कुछ एक

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
2: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
5: लिंक्ड नहीं चाहता है कि आपका बकाया टोल आपकी रफ्तार को धीमा करे, इसीलिए हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं, साथ ही टोल नोटिस पर लगने वाली एडमिन फीस भी हटा दी गई है ताकि भुगतान करना आपके लिए आसान हो सके, जुर्माने का जोखिम न उठाएं। आज ही लिंक्ड टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें। अधिक जानकारी के लिए देखें linked.com.au/nswtolls।
6: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा,
7: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
6: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
8: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
3: अल्फा प्रोग्राम, उसका जुनून है।
8: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
8: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
9: शुरू करो अग्नि परीक्षा
8: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
10: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
11: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
11: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
11: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर, अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी, तुहाडी सेवा विच।
12: Yeah, dog, you're killing the game. Oh, yo, gee,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
0: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਸਰਪੰਚ।
6: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: लादे फेरे।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी रेडियो
6: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
7: ओ माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा
1: टाइट वेरी टाइट।

मेरी ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Alpha. सबसे दमदार और रोमांच कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है.
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को.
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर.
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में. अल्फा
2: इंडिया अल्फा से डरेगा.
4: वो वेट कर रहा है तुम्हारा.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पर संसार तिस पर को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब कीरत होए नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास।
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्व निधान प्रभु तेरी मैया आपो कछु ना किन्हू लया।
0: जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक कै कछु न हाथ।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। 8-6 श्लोक।
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक गुणवंता साध जना की अचार्ज कथा। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: साधक संग मखूजल होत साध संग मल सगली खो।
0: साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान।
1: साधक संग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा।
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी।
0: साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्ल।
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन।
1: साधक संग न कतु धावे साध संग अस्तित मन पावे।
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
1: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी।
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर।
1: साधक संग नही को मंदा सा संग जाने परमानंदा।
0: साधक संग नही हो ताप साधक संग तजै सा बाप।
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई।
0: साधक संग न भूतावे साधक संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह।
0: साधक संग बसै थान उचे साधु के संग महल पहुंचे।
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म।
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान।
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे।
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा।
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन।
1: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम।
0: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल।
1: साध के संग कुलूकत हरै साध के संग नर पर हरै।
0: साध के संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला।
1: जो इच्छा सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै।
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक कुदरै साध सुन रसै।
1: साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ।
0: साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै।
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा।
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी।
1: साध के संग मेटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग।
0: साध की महिमा वेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने।
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर।
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूच ते मूची।
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। 8-7 श्लोक।
0: मन साचा मुख साचा सोए अबर न पेख एक बिन कोए। नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै धीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सहि स्वभाव।
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रव संग।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जगत ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्याग।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस गुण भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216-OLD-G-LONG-ROAD Hoppers Crossing Very B Toyota The Smart Choice।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
2: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हरेक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
2: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स का गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: आप अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
3: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज है, ये ऑलरेडी है, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो इजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माय टाइम इज 15 मिनट्स, मैं कर पाती हूँ तो 15 मिनट्स आई डू माय मेडिटेशन, when then as a follow up to that I continue with this. Not
0: so I come,
3: may,
0: when I come back, you know,
3: yes,
0: when I come back filled, yes,
3: then I do this. So suppose agar main roz 15 minute baithi hu, let's say, तो वो ही 15 मिनट करूं, और वो गुण पर चिंतन करूं, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरूं, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी वन आवर करते हैं, उस हर एक मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है। इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली। 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है, इट विल डेफिनेटली
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने चाहिए।
2: बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है। कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा। क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है। और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे। फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा ना भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
2: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन।
3: बेसिकली 15 मिनट में अपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना, अस्सी, जैसे गिरीश भाई ने कहा वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले। आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स। गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं। तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे, then it will hardly take any time to do its work.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें। क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है। I just can't imagine, visualize नहीं कर पाते हैं।
2: I will give you one example कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा। वह है डायबिटीज। कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें। कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे। शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं। शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया,
0: बिना दवाई।
2: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे थे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर। अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई। और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई।
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की?
2: हाँ, ब्लड इंसुलिन। आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ? परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपने बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है जो विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है।
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है?
2: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ। तो सबसे पहला तो ये स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है। शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है, तो ब्लड वेसल से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं।
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
2: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
2: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
2: है तो काम नहीं कर रहा है।
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
2: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
2: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी पर
2: सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये
0: चारों कैसे करें?
2: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: आई कुड विजुलाइज एक्चुअली
2: सटल इट, ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
2: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक ना

0: हाँ कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है. नो दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकती है. दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है तो क्या होगा,
1: मन करेगा खाने का.
0: हाँ, फिर क्या होगा, करेगा तो
1: हम खा लेंगे.
0: नहीं, उससे पहले क्या होगा, मुंह में पानी आएगा.
1: अच्छा, मुंह में पानी
0: देखो वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया. तो ये भी एक ग्रंथी है.
1: अच्छा,
0: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथी से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है. जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है, लेकिन अलग प्रकार का है. तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है. सब पेशेंट कहते हैं हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके
1: तब ये, हाँ तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना.
0: हाँ,
1: पॉसिबल.
0: और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले, जैसे ही खाने की डिश आ गई आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ. देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपन्स.
1: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा. वो तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
0: हर हर और
1: उतना ही जितना चाहिए.
0: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा. पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया. कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे. सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है. तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए.
1: अच्छा,
0: भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया.
1: इट इज एक्चुअली वर्किंग.
0: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है.
1: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
0: है ही. हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है. तो ये सेकेंड लेवल हुआ. फिर अभी थर्ड है कि ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी.
1: अब क्योंकि खाना खा लिया
0: उसके बाद का विजुअलाइजेशन कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है. तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए. जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई. उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं. यह सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, यह सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है. अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए.
1: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया.
0: हाँ,
1: वो व्हाइट व्हाइट स्क्वायर.
0: हाँ, स्क्वायर से वो
1: कर पा रहे. और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता
0: है. बना के बताते हैं प्रैक्टिकल. जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है. वह दूसरा एक कहते हैं कि आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो. 250 लिखा है सारे बॉडी में. 250 लिखा हुआ है. ब्लड में उतने सारे स्क्वायर्स है. अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ. हाँ, अभी 150 हो गई. तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए. तो रियली ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया. आत्मा में वह शक्ति है कि वह प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है.
1: Does it require quite lot of concentration?
0: Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है. जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी.
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा

0: ही दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन, मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है। अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट। नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी, सो इफ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं।
1: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ को, अच्छा दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती।
0: एग्जैक्टली क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड, हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते। हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए, अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माई माइंड विल डू इट। सी इफ माई माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माई माइंड कैन हील द थिंग। अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना। इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर, अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते। नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, then the power of the thought will not work. Power of the mind to work, फिर वो thought powerful, positive and concentrated होगा, उसमें कोई
1: conflict नहीं होगा,
0: dilution भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक thought है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा thought है office में तो आज ये काम किया नहीं, then तो क्या एक thought से मैं positive emotion create कर रही हूँ, दूसरे thought से मैं stress create कर रही हूँ, तो I'll be opening and closing the door actually. Actually, so it won't work properly. It has to be very focused, channelized thoughts. इसलिए meditation का जो अभ्यास regular रीति से करेंगे, फिर उनके लिए ये करना it's just an extension. It's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
2: Actually, और एक aspect आपको बताता हूँ जो diabetes में है कि भी अधिकतर जो type 2 diabetes है लोगों को कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, type 2 diabetes में insulin तो होता है, अधिक भी होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
1: अच्छा तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी
2: काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंक लगा है, वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है, टेंशन ग्रीड ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है, सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा अच्छा हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया, अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
1: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
2: कम, हाँ फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
1: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें सचिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
0: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
1: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
2: पेन मैनेजमेंट के लिए पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है उसको मैंने रिलीज कर दिया।
1: हाँ,
2: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
0: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। I've personally seen the dentist says आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, वी वर क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा के ये दोनों जो फैकल्टीज हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
2: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं, ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे, आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 इयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का अभी जरूरत क्या है, एक तो बताता हूं पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे, अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
1: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी,
2: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा, दूसरा ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है, वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है, और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
0: राइट, इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ, आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। एक्चुअली वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
1: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहें और सोचे,
0: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
1: वेरी ट्रू शिवानी, डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है, आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं, और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं, आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Yeah.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यू आर लिसनिंग
3: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: हाँ जी 1600

ब्रदर्स रेंज रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ श्रीपाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Hanji, oye Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: रेडियो हाँ जी 1674 AM, मैं गौतम कपिल ते प्रोग्राम डीप टॉक शो स्वागत है जी तुहाडा इस नवे नकोर प्रोग्राम दे विच नवे नवे एपीसोड दे विच। और जे तुसी सानू पॉडकास्ट तो सुन रहे हो शुक्रिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो सुन रहे हो धन्यवाद, ते जे तुसी अपने मोबाइल तो वैबसाइट दे राही या फिर डायल टू लिसन नंबर दे राही सुन रहे हो तां वी थैंक यू। अलग अलग भाषावां दे विच अलग अलग तरीकियां दे नाल धन्यवाद करन दा इह तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि कुछ नवा लैके आए हैं हुण एक नवी सीरीज दे विच, इंज कह सकदे हो कि तुसी पार्ट टू शुरू हो रहा सीजन टू डीप टॉक शो दा। सो वेलकम जी जी आयां नूं। और प्रोग्राम शुरू होने तो पहले ही दस दें कि अपनी फीडबैक 0472-6016-74 या facebook.com/ हाँ जी सिडनी के उत्ते भेजते रहो। आओ स्वागत करते हैं बगैर किसी देरी तो डॉक्टर संदीप कौर होर का जिन्होंने यह प्रोग्राम पेश करना है। तो नाल मैं तो माड़ा मोटा जो एक दो सवाल अपनी समझ के नाल करना पर पूरे प्रोग्राम तोड़ना तो संदीप कौर होर ने। संदीप जी सत श्री अकाल, वेलकम जी, की हाल चाल ने?
1: मैं ठीक है जी, तुसी बिल्कुल सुनाओ
0: की जी? जी जी बहुत वधिया, बड़ा एक गैप जेड़ा सी साडा रहा सीगा पर हुण एक बार फिर तो शो शुरू कर दिते ने आपा बकायदा। ते मेरे ख्याल दे नाल पिछे जे आपा एक गल भी कीती सीगी कि जेड़े हुण शो करने ने उहनां दे विच साइंस दे नाल नाल साइंस दे नाल जुड़दियां होर जेड़ियां वनगियां ने उन्हां नूं भी जोड़िया जावे, साइंस दी होर ब्रांचिज भी जिहड़ियां नाल जोड़ियां जाण। ये किदां बैठे बैठे खुराफात आई तुहाडे दिमाग दे विच?
1: असी इदां गल जदों कर रहे सी पई गल कर रहे सी कि शायद जो साइंस दी गल करदे आ मे बी थोड़ा ज्यादा कई बार कॉम्प्लीकेटेड हो जांदा तां असी थोड़ी जी हुण कोशिश
0: कॉम्प्लीकेटेड करांगे।
1: हाँ जी, कि जनरल जिहड़ी आपां अपनी डे टू डे लाइफ च भी देखदे आ जिहड़ी सिद्धा असी मतलब फील करदे आ जिहड़ियां चीजां हैना सानूं लगदा कि साडे एज अ बीइंग साडे नाल जुड़ियां हुंदियां आ जां साडे चाहे वह साडे इमोशनस हो गए चाहे असी जो देखदे आ आले दुआले हो गया है ना परसीव की करदे आ कि मैमरीज जो साडियां हैगियां बचपन तो लैके हुण तक दियां वह सारियां चीजां जिहड़ियां मिला के किवें साडी बॉडी फंक्शन करदी आ। तो असी सारा सोच रहे सी कि इनू किदा इंटरेस्टिंग बनाईए तो फिर साढ़े दिमाग च आए कि फिलोसफी एक वधिया जिहड़ी चीज हैगी आ जिहनू आई थिंक मैनूं लगदा सारे पसंद करदे आ सुनना है ना, ते हर कोई मैनूं लगदा कि फिलोसफर हुंदा ही तो कोई ना कोई फिलोसफी साडी सारिया नहीं हुंदी है ना। तो हाँ जी मैनूं लगदा कि सब तो इंटरेस्टिंग टॉपिक फिलोसफी सारिया दे लई मतलब चाहे कोई भी हो चाहे वह किसी भी पार्ट च रहिंदा हो वर्ल्ड दे जां किसी भी एज का जिहड़ा ह्यूमन बीइंग हो सारिया नूं अट्रैक्ट करदी है ना।
0: नहीं ये चे कोई शक नहीं हैगा, ये तुसी एक सियानी गल कहती कि हर बंदा अपने आप दे विच फिलोसफर है, हर बंदे दे कोल आपो अपने सिद्धांत हैगे ने। ते उहदे चे जदों फिलोसफी दी गल आंदी है ते फिलोसफी नूं एक ना जिद्दां तुसी दस्सिया कि तुसी परसीव किद्दां करदे हो यानी कि मैं की गल कही है ते तुसी की समझी है, फिलोसफी इहदे च बड़ी डूंघाई दे विच चली जांदी।